0: to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
6: City FM 89.
7: We're playing your song.
8: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
9: No talk.
10: Just you
9: and the music.
10: Back to back
9: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
3: You're listening to City FM 89.
4: We are playing your song.
1: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 9 a.m. City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: Trending today.
6: Paramount Pictures has released a new official trailer for Ebenezer, a dark reimagining of Charles Dickens' A Christmas Carol. The film stars Johnny Depp as Ebenezer Scrooge, marking the actor's first major Hollywood studio release in 8 years. The film releases in November 2026.
2: City FM 89.
7: Naya Pond's body lotion, jisme hai 100 tola gold. Bas bottle ko scan karo. स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
8: द वेट इज फाइनली ओवर. नेक्स्ट अप खारिया में हो रही है सेकंड बैच की इंडक्शन फॉर इयासा पार्ट 147 B1 B2 ट्रेनिंग प्रोग्राम.
9: अब मिलेगी आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, वो भी यहीं पाकिस्तान में, इन प्राउड एफिलिएशन विद फ्लाई ऑन एरो इटली, अप्रूव्ड बाय इटालियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ईएनए.
10: अगर आपका ख्वाब है एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का और बनना है इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट, देन दिस इज योर मोमेंट टू शाइन.
9: रियल एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और ग्लोबल करियर एक्सपीरियंस, सब कुछ एक ही प्रोग्राम.
10: लास्ट डेट टू अप्लाई इज 4th October 2026. अभी अप्लाई करें at www.nivt.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 9:30 a.m.
2: City FM 89.
3: We're playing your song.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
2: City FM 89.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10 a.m.
4: City FM 89. We're playing the song.
5: Trending today.
6: Paramount Pictures has released a new official trailer for Ebenezer, a dark reimagining of Charles Dickens' A Christmas Carol. The film stars Johnny Depp as Ebenezer Scrooge, marking the actor's first major Hollywood studio release in 8 years. The film releases in November 2026.
2: City FM 89.
7: Naya Pond's body lotion, jisme hai 100 tola gold. Bas bottle ko scan karo. स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए देखा ना मिरेकल्स हैपन
2: सिटी एफएम 89
0: यू आर लिसनिंग टू
2: नॉन स्टॉप हिट्स
8: नो टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
0: Coming up next.
1: Full disclosure.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: Trending today.
7: Paramount Pictures has released a new official trailer for Ebenezer, a dark reimagining of Charles Dickens' A Christmas Carol. The film stars Johnny Depp as Ebenezer Scrooge, marking the actor's first major Hollywood studio release in 8 years. The film releases in November 2026.
8: We are
9: City FM 89.
10: Is awaaz ne chheen liya hai sukoon? To le aaye Mospel. Kyunki day ho ya night, Mospel karega ghanto fight. Mospel. मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
11: पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी शौकत खानम लैब के मयारी टेस्ट और होम सैंपल कलेक्शन की सर्विस मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप अपने सारे टेस्ट शौकत खानम लैब से करवाएं और शौकत खानम कराची की तकमील में अपना हिस्सा डालें।
12: 89.
13: We're playing your song.
14: Expose yourself to a world of music.